0: Tanzania.
1: It's a brand new release on Sangeet 106.1 FM. This is us.
2: आई बड़े बड़े
3: ओगम ओगम ओले मैसेज में ना 3431061
2: बड़े
3: let me know how it's starting off how it's starting
2: भाग से बेटा होता है
3: how it does the music boy Vishal sound from Suriname
2: है वो तो सौभाग्य
3: 3431061

सकलाय जगद्धिताय नागासुत्तिक विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते ओम गम गणपतये नमः बोलो।